कति धुमधाम राइट टपन नयाँ इबी मेरो टियागो इबीसँग लाइफ छ टुपन. Elders love it, so do the young. It's

काम साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, go.

0: कदम मेरे कदम,
1: किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा,
2: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा।
0: धूप में खिला है चांद दिन।

0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद के बिना कहे सुने ये बात हो गई।
2: ओहो ओहो ओहो।

सपन ताकि धूमधाम राइट सपन नया ईवी मेरो टियागो ईवी संग लाइफ छ सुपर फन एल्डर्स लव इट सो डू द यंग इट्स सेफ इट्स प्लेफुल गेट